0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनोस सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: नौनी दाई वन में तो आग लगे निभा जाऊ न
2: सिंगो बनी सका पनि हो
3: हाम्रो वन हाम्रो धन डरेलोबाट जोगाउन डरो जतन वनमा डरेलो लगाउने कानूनी अपराध हो डरेलो लागेको देखेमा तुरन्त नजिकको वन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा खबर गरौं वन जोगिए मात्र हामी जोगिन्छौं
4: अनुरोध गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा

जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को सहयोग रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकार्यमा कुष्मा नगरपालिका पर्वत

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनाओ सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियो।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

0: यो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले अपराह्न को ठीक 3 बज्यो।

0: प्रेस रजिस्ट्रार को कारण है गंडकी प्रदेश पोखरा।
1: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भंडारी चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा में।
2: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भंडारी आईतवार देखि शुक्रवार सम्म साझा 5 बजे पछि अथवा आवश्यकता अनुसार यस चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा में आउनु हुने भएकोले समयमै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला।
1: उपचार सेवाहरू
2: भेरिकोस भेनको लेजर उपचार, खुट्टाका सुन्निएका तथा फुलेका नसा लेजर प्रविधि बिना ठूलो चिरफार उपचार करने विधि,
1: अल्ट्रासाउण्ड तथा सिटी गाइडेड बायोप्सी प्रक्रिया, मासु को टिश्यू नमूना लिएर रोग जस्ते ट्यूमर पत्ता लगाउने प्रक्रिया,
2: रक्तनाली सम्बन्धी रोगहरूको उपचार, एंजियोप्लास्टी स्टन्ट राख्ने प्रक्रिया, इम्बोलाइजेशन,
1: क्यान्सर उपचार, ट्यूमर एब्लेसन तथा विशेष थेरापीहरू, सानो चिरफार मिनिमल इन्भेसिव विधिबाट ट्यूमर नष्ट गर्ने उपचार,
2: शरीरमा जम्मा भएको पस वा असामान्य तरल पदार्थ निकाल्ने प्रक्रिया,
1: पाठीघरको मासु युटेरिनल फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन, पाठीघरमा भएका फाइब्राइड मासुका गाँठालाई शल्यक्रिया नगरी उपचार गर्ने विधि आदि।
2: थप जानकारीका लागि चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरा फोन 061582778582779582778।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 5 बज्यो।

जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय को सहयोग रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकार्यमा कुष्मा नगरपालिका पर्वत